0: Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब Mornings रहेगा एकदम Mad.
1: सुबह का बिगेस्ट सीन शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी वाइब. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

0: यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।
1: ए बंजारा।

चाय गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शारजील।

0: शर्जील
1: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली फ्रॉम 6 AM टू 11 AM
2: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

0: Augusta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Augusta office today or call 800 Augusta now. Augusta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर

0: बॉलीवुड का मसाला दुबई की मस्ती, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what your emotions are, I'm gonna call it.

0: धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया।
1: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। YBFM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
2: Desi music station.

0: रुक जो बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए
0: एनर्जी बोले
2: YFM 105.4

शारजहां से शाम तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर। देसी सॉन्ग ऑफ द आवर, ओनली ऑन वाइब।

0: दर्द दिल की फीलिंग्स।
1: ये है यूएई का देसी साउंड ट्रैक वाइब एफएम 105.4।
2: या लेट्स गो। आया शर्जील, आया शर्जील, मैड मॉर्निंग्स लाया शर्जील,
3: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली फ्रॉम 6 AM टू 11 AM
1: ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।
4: Got an Angela, Abby, y'all already know, baby.

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: Mad Mornings with RJ Shrijil only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

बोले झुमका किरारे रेडियो बोले झुमका 105.4 UAE का नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station.

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800 Dugasta now. Dugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब FM 105.4 पर

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। Vibe FM 105.4, number one desi music station in UAE.

शारजहां से शाम तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर।

0: केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है वाइब एफएम 105.4।
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

0: यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: Love song of the hour on Vibe FM 105.4.
1: बॉलीवुड का मसाला दुबई की मस्ती सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।
2: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

कार में ही रहिए, दिल में वाइब्स, ड्राइव का परफेक्ट साथी, वाइब एफएम 105.4।

message, eh?

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

चाय गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शार्जिल।

0: झुमका किरारे
1: रेडियो बोले
2: झुमका
1: वाइब FM 105.4 UAE का नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब एफएम 105.4 द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Bad Mornings with RJ Shrijil only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest सीन शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

शान की आवाज में आपके लिए फ्रॉम द मूवी बॉडीगार्ड। हाँ, ये वाला बॉडीगार्ड तो अलग ही होता है। बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग। शुक्रिया मैड मॉर्निंग्स। मैं हूं शर्जील, आप सुन रहे हैं FM 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE। यार मुझे एक सवाल जो है ना हमेशा परेशान करता है, एंड ये सवाल जो है ना बहुत, ये एक्चुअली सबका सवाल है, मेरा भी सवाल है, आपका भी सवाल है, हर किसी का सवाल है कि UAE में सबसे फेवरेट महीना कौन सा होता है। सही है, क्योंकि इसका जो है ना सीधा जवाब किसी के पास नहीं होगा, कुछ भी कर लो आप, आपके पास नहीं होने वाला। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। UAE में लोग कहते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सही, ये 6 महीने ठीक है, बाकी सब जो है ना वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक महीना चाहिए जो बेसिकली आपका मतलब पर्सनालिटी रिवील करता है। ऐसा कौन सा महीना है? मेरा जवाब मैं आपको बताता हूँ, पहले माई आंसर इज नवंबर। ये एक ऐसा महीना है जो बेसिकली हमेशा सबका फेवरेट होना चाहिए, बिकॉज नवंबर में गर्मी गायब हो जाती है, डेयर सफारी भी चल रही होती है, रात भर बैठ के आप आराम से अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते हो, बाहर दुबई में एयर शो हो जाता है, सब प्लान बन जाते हैं, लोग खुश रहते हैं, दिल में उम्मीद रहती है कि अब ये महीने जो है ना आगे वाले ये एकदम ठीक जाएंगे। नवंबर में UAE में रहना ऐसा फील होता है जैसे आप एक्चुअली है ना आप एक गिफ्ट लेके आए हो ना, वो हाँ गिफ्ट के साथ बड़े खुश हो। अब आप बताइए मुझे, सही है, देखिए जवाब जो है बहुत सिंपल होना चाहिए। किसी ने अगर बोला है मुझे दिसंबर है, मतलब क्योंकि वहाँ पे नेशनल डे हॉलीडेज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कोई बोलता है मार्च है बिकॉज मार्च में जो है अलग ही बाहर आ जाती है, ऐसा नहीं होते भाई। जून का महीना अगर आपने सर्वाइव किया ना, आपने बताया ना कि जून आपका फेवरेट महीना है, तो आपको मालूम है क्यों होगा, क्योंकि आप वही फ्लाइट पर लेके जा रहे होगे कहीं पर, एंड यू विल बी लाइक अवे फ्रॉम दिस एंटायर गर्मी। एंड एक चीज़ सही, बहुत सिंपल चीज़, आपका फेवरेट महीना कौन सा है? जब आप

0: फ्लाइट बुक करके घर जा रहे होते हो या आपके पास यहाँ पे कोई स्पेसिफिक महीना है? बिकॉज फॉर मी इट इज वेरी सिंपल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. मार्च में आके मैं जो है ना बस खत्म करूँ, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा अपने से. तो आपका महीना कौन सा है सबसे फेवरेट वाला? डू लेट मी नो 0508791054 पे. आज गानों का सफर जो है ना थोड़ा सा अलग लेके जाएंगे, थोड़ा सा इसको टोन डाउन कर लेता हूँ, बिकॉज
1: गाने गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल. वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई.
0: जो भी हो जैसा भी हो आज की रात, हाँ, मधुमति बख्शी, दिवा कुमार, मैं गाने का नाम ले रहा था, बाकी कुछ सोचिए मत, बहुत नॉटी हो जाते हैं सबके सब. 9:23 ऑन द क्लॉक, 5th ऑफ मई 2026, मैं उशर जील, गुड मॉर्निंग यूएई.

शारजहां से शाम तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800-DUGASTA now. Dugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर

0: बड़े सालों बाद ये गाना आया है वापस सामने, हाँ मेरे सामने, ऑब्वियसली मैंने भी सुनी है। शो कर रहा हूं मैट मॉर्निंग्स ऑन वाईफ एम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई। हाँ, ट्यूसडे, द फ्रेश एयर ऑफ ट्यूसडे। मतलब एक बात बताइए, मुझे ये समझ भी नहीं आता, सही है, जब भी ट्यूसडे आता है ना, हम लोग मंडे को ऐसे क्यों बोलते हैं, जैसे बुरा एक सपना था, चला गया, एंड वी डू नॉट वांट टू थिंक अबाउट मंडे। यार उस बेचारे की गलती क्या कि वो एक वीकेंड के बाद आता, अगर आपके हिसाब से सही है। लाइक आई हैव सीन द वीकेंड चेंज इन यूएई ट्वाइस। पहले जो है हम लोग के टाइम पे इट यूज टू बी थर्सडे फ्राइडे, देन इट बिकेम फ्राइडे सैटरडे, नाउ इट इज सैटरडे संडे एज पर ग्लोबल कैलेंडर। बट एक टाइम था जब जो वीकेंड जो है ना, इट यूज टू फॉलो ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, क्या मजा आता था भाई साहब। मतलब इट वॉज लाइक द बेस्ट टाइम यू कुड एक्चुअली लिव इन यूएई, एंड वॉज रियली रियली गुड। बट फिलहाल देसी वर्ल्ड रैप, नया सेगमेंट नहीं, पुराना ही सेगमेंट है, नई बातें करते हैं इस पर। आ जाओ, पांच अमेजिंग देसी वर्ल्ड रैप्स।
1: गेट खुला है हेडलाइंस का, चलो बोर्डिंग करें।
0: आज का देसी वर्ल्ड रैप, पहली खबर, फोर इडियट्स। हाँ, थ्री इडियट्स के बाद फोर इडियट्स आने वाली है। द टाइटल हैज बीन कंफर्म्ड, वी हैव सीन द फर्स्ट लुक ऑफ इट। इसमें अभी जो है हम लोग को मालूम है, वी हैव आमिर खान, माधवन, शर्मन, करीना, एंड द फोर्थ इडियट इज गोइंग टू बी विकी कौशल। ही इज गोइंग टू बी कमिंग इन टू द न्यू द फ्रेंचाइज ऑफ थ्री इडियट्स। एंड ये मूवी अभी कैसा होने वाला है एक नए कैरेक्टर के साथ आफ्टर द एडिशन, हाउ इज इट गोइंग टू बी, इसके लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। बट ये है कि 2009 के बाद आज जो है फिर से मन कर रहा है बोलने का, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपका भी हो रहा है ना, चलो ठीक है। बट नंबर टू, यूएई में से ये जितने भी देसी कम्युनिटी वाले ना, सब के सब फुल लगे हुए हैं, बिकॉज दे वांट टू नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग एट द मेट गाला। अनन्या बिरला हैज मेड हर मेट गाला लुक, भाई मतलब एक मास्क पहन के लोहे का, एकदम अमेजिंगली शी वॉज लुकिंग गुड। सही, अभी पता भी नहीं अंदर वो थी भी या नहीं थी, बट हाँ मेट गाला वाला फील जो है ना हम लोग को तब आता है जब ऑफिस के अंदर जो है एक फ्रेशर्स पार्टी, नहीं फ्रेशर्स पार्टी नहीं, क्या होता है वो, एंड ऑफ द ईयर, नहीं एंड ऑफ द ईयर तो होता ही नहीं कभी ऑफिस में, ऑफिस में कब होता है आपको वो मेट गाला वाला फील वाला लुक, जब आप रेडी हो क्या होते हैं। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब भी इफ्तार होता है, दिवाली पार्टी होता है, या ये स्पेशल ओकेजन होता है, तभी आपको जो है ना वो एकदम मेट गाला वाला लुक लेके आना पड़ता है। आइटम नंबर थ्री, वैभव सूर्यवंशी, 15 साल अभी भी ट्रेंड कर रहा है, आईपीएल का द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेयर। शुभमन गिल भी जो है ना इस बार सोच रहे कि यार आईपीएल में कैप्टन बन के अच्छा है उनके लिए, दैट ही इज अ कैप्टन ओवर देयर, बिकॉज वैभव सूर्यवंशी इज स्टिल द टॉक ऑफ द टाउन, बिकॉज एवरीवन इज थिंकिंग यार ये इसके, लाइक आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज एंड न्यूज कि इनका एज जो है 15 नहीं है, ये 17 है। भाई 15 हो, 17 हो, 20 हो, 22 हो, 25 हो या 30 हो, इट डजेंट मैटर, ही इज प्लेइंग वेल, तो उसकी जो है ना मतलब उसमें खुश रहना चाहिए ना। वाई इज एवरी वन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर जस्ट टू फिगर आउट के ये बच्चे का एज क्या है। इट डजेंट मैटर वॉट इज एज इज, अगर आपके पास एज होता ऑन योर साइड, वॉट वुड बी दैट वन थिंग दैट यू वुड डू। सही है, लाइक फॉर मी, मेरे पास अगर एज होता ऑन माई साइड, जो अभी भी है, अगर मेरे पास और 10 साल होते अपने लाइफ में और बढ़ाने के लिए, आई वुड हैव स्टिल कंटिन्यूड प्लेइंग क्रिकेट। बट अब तो ठीक है, अभी भी खेल सकते हैं, बट अभी जो है खेलने के लिए ना वो अलग मूल है। बट एट द एंड ऑफ द डे, ऑलवेज रिमेंबर देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर प्लेयर जिनके ऊपर एक मूवी बनी थी, प्रवीण तांबे। कौन प्रवीण तांबे, अगर आपको मालूम है, यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज ही इज वन पर्सन हु एक्चुअली लेफ्ट एन इम्पैक्ट सेइंग एज इज जस्ट अ नंबर।
2: यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना, अपना। YFM 105.4, the UAE's number one desi music station.
0: Age कोई भी हो, but हमेशा जो है ना चुल, yes चुल, sorry कर गई चुल, गाने का नाम बोल रहा था, क्या हो गया? 9:46 on the clock. मैं उशर जील, good morning.

बॉलीवुड का मसाला दुबई की मस्ती, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: फ्रॉम द मूवी भूल चुक माफ आपके लिए चोर बाजारी नीरज श्रीधर एंड सुनिधि चौहान। भाई ये गाना जो है ना आज भी नॉस्टैल्जिया हिट कराता है। आपका नॉस्टैल्जिक फील जो है ना मालूम है कब आता है, जब आप सुनते हो कि यार आज जो है इट इज़ गोना बी अ वेरी फ्रेश डे। फ्रेश डे मालूम है कब आएगा, जो अच्छे दिन जो बोलेंगे भाई, देयर आर सो मेनी डेज वे यू कैन से एक्चुअली कि अच्छे दिन आने वाले। बट हाँ, दिल और दिमाग के बीच में कौन सा वाला टाइम आता है जब आपको लगता है कि अच्छे दिन आने वाले। चलिए दिल से दिमाग ट्यूसडे शुरू करते हैं।
1: दिमाग खराब मत कर, दिल से दिमाग ट्यूसडे।
0: देखिए दो चीज होते हैं, पहले आता है दिल जो एकदम रॉ ऑनेस्ट एंड बिना कोई फिल्टर के आता है, फिर आता है दिमाग जहां पे प्रैक्टिकल रियल एंड यूजफुल रहने का आ जाता है। यूएई में आप वो इंसान हैं जो आप होना चाहते हैं या और कोई बन जाते हैं। वेल दिस इज वन इश्यू व्हिच एक्चुअली कीप्स हैपनिंग, वेयर देयर इज अ परसेप्शन गेम व्हिच एक्चुअली कीप्स चेंजिंग। यार मतलब एक बहुत सिंपल सवाल है, सही है, खुद अपने आप को पूछेगा रात को एक्चुअली कि नींद जब आपको आ रही होती है ना, वो रात के 2 बजे वाली नींद, तब आप सडनली उठते हो ना, आप बोलते हो यार रेडियो ऑन करना था, वाइब एफएम सुनना था, शर्जील को सुनना था, क्या करना था आपने कर लिया। बट उस वक्त आपका दिमाग जो बोलता है यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अभी अपनी नींद पूरी करनी है बिकॉज आई हैव टू बी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर, ज़्यादा पेशेंट, क्योंकि लाइफ का जो है ना एक फोर्स अलग ही चल रहा होता है। देखिए कुछ लोग जो है ना अपनी ड्रीम जॉब पे आते हैं, कुछ लोग जो है अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, कुछ लोग जो है अपनी फैमिली के लिए दे लुक फॉर अ बेटर फ्यूचर, कुछ लोग जो है अपने लिए दे स्टार्ट ऑफ फॉर अ बेटर फ्यूचर। सी स्टार्टिंग ऑफ एंड कंटिन्यूइंग आर टू डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। जो लोग अपना करियर छोड़ के खुद का जॉब जो है ना, मतलब खुद अपने आप को ही एक जॉब दे देते हैं, दैट इज समथिंग विच योर दिल कैन से कि आप कर लो। एंड जब दिमाग की बात आती है इट बिकम्स मोर ऑफ अ स्टेबिलिटी गेम। तो दिल अगर आपको बोले आपको कि जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू, आपको जाना चाहिए एंड यू शुड एक्चुअली डू वॉट यू वॉन्ट टू, तो फिर क्या आपके दिमाग में आएगा? वॉट इज दैट वन पर्टिकुलर बिजनेस दैट यू वुड वॉन्ट टू डू इन यू ए? डू लेट मी नो 0508791054 पे, बिकॉज दिल दिमाग इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आता है लाइफ का जब आप सोचते हो रियलिटी कैसे हिट करने वाली है। एंड रियलिटी वाली बात जो है ना भाई बहुत अलग होती है, बिकॉज रियलिटी में आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट, यू कैन थिंक अ लॉट, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कैसल्स इन द एयर, बट क्या वो कैसल आपको कहीं पहुंचा पाएगा? यस, दैट इज द मेन रीजन वे यू शुड थिंक कि दिल और दिमाग के बीच में क्या होना चाहिए। इज इट द रियलिटी, इज इट द ट्रूथ, इट इज द
2: हुक जो बोले
3: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुक जाए।
2: एनर्जी बोले वाइब एफएम 105.4।
0: देखो दिल हो दिमाग हो जो भी हो, उसके पहले आता है किसी साथी का हाथ। हाँ तू मेरी, बैंग बैंग से विशाल ददलानी ऑन द वोकल्स। वॉल्यूम बढ़ाइए, शीशे गिराइए, चाय की पहली चुस्की, पराठे के पहले बाइट, सुनते रहिए मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइफ एम 105.4। सुबह यूई वाली मैडनेस, देसी वाली, गुड मॉर्निंग।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

0: Mad Mornings with RJ Shrijil only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

0: मोंटी शर्मा शान ऑन द वोकल्स 10:15 ऑन द क्लॉक. मैं हूं शर्जील, आप सुन रहे हैं मैड मॉर्निंग्स ओनली ऑन वाईएफएम 105.4. भाई क्या स्वीट गाना था, आज भी इसको सुनो ना आफ्टर सो मेनी इयर्स 2007 के बाद. हाय इट्स स्टिल अ वाइब. शुक्रिया मैड मॉर्निंग्स ऑन वाईएफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई. मैं हूं शर्जील एंड कभी-कभी जो है ना मैं हमेशा एक सोच में पड़ जाता हूँ कि यार सोच में ना एक अलग ही मेरे को एक एक फील चाहिए. बॉलीवुड की दुनिया में अगर देखा जाए ना दस सो मेनी थिंग्स विच कीप हैपनिंग एंड लेट्स सी कि बॉलीवुड एंड बियॉन्ड में आज क्या चल रहा है.
1: एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट
2: और उसका बाप बॉलीवुड एंड बियॉन्ड.
0: यूएई के सिनेमाज में फाइनली आ गई है डेविल वेयर्स प्राडा 2 एंड माइकल. ये दो मूवीज जो है ना इट इज गोना बी कंप्लीटली ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दोनों में जो है ना एक अलग ही स्टोरी लाइन है, एक अलग ही नॉस्टैल्जिया है. बट विच वन वुड यू वॉच फर्स्ट, वुड यू वॉच माइकल या डेविल वेयर्स प्राडा 2? बिकॉज अभी यार देखो अपने पास तो ऑप्शन क्या है, वेट करने का. बिकॉज वेट करेंगे तो फिर आएगी फोर इडियट्स. हाँ थ्री इडियट्स के बाद फोर इडियट्स आने वाली है एंड 2026 में आई होप इज गोना बी कम्प्लीटली डिफरेंट. कोई नया मैसेज होगा, क्या अलग एंगल होगा, क्या ये सीक्वल नोस्टाल्जिया हिट कर पाएगा या जैसे तारे जमीन पर से सितारे जमीन पर बना वैसा वाला कुछ. आई डोंट होप ऐसा हो बिकॉज योर थ्री इडियट्स इज वन मूवी विच इज क्लोज टू एवरी वन हार्ट. लाइक फॉर मी इट वॉज अ वेरी डिफरेंट आई चेंज बिकॉज वही जब थ्री इडियट्स का शूट हुआ था वेन द मूवी वॉज आउट दैट इज वेन आई एक्चुअली मूव टू बैंगलोर टू स्टडी एंड वो जो है ना कंप्लीटली रिलेटेबल, कंप्लीटली ना दिमाग में वो चिपक गया था मेरे कि यार ऐसा क्या हो सकता है लाइफ में. वेल आई विल हैव टू वेट एंड सी बिकॉज होप लेवल सबके हाई है, एंग्जाइटी लेवल भी हाई है. बट यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन इन लाइफ बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे इट इज बॉलीवुड, इट हैज समथिंग. वो कहीं ना कहीं से अगर उठाए भी जाए ना मूवी इट इज स्टिल ओके, वी विल बी हैप्पी विद इट. तो फोर इडियट्स, क्या आप एक्साइटेड होने वाले हैं ये मूवी को देखने के लिए या आप जो है वेट करने वाले हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड इज अ जंगल एंड जंगल में क्या होता है?
2: चाय गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी. सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शर्जील.
0: नहीं नहीं जंगल में चाय नहीं होती है, जंगल में कांड होता है. भेड़िया से आपके लिए विशाल ददलानी, सिकंदर सिंह. 10:17 ऑन द क्लॉक. मैं हूं शर्जील, आप सुन रहे हैं मैड मॉर्निंग्स ओनली ऑन वाईएफएम 105.4. 5th ऑफ मई, गुड मॉर्निंग.

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल, यूई का अपना दिल, वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800-DUGASTA now. Dugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर We are the sounds of the streets.

0: बॉडी क्या, इधर तो दिमाग भी मूव हो रहा है। 10:31 ऑन द क्लॉक, मैं हूँ शर्जील। भाई सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसे ट्रेंड आते हैं कि उसमें दिमाग, दिल, हर चीज जो है ना, मानसिक संतुलन ही हिल जाता है। सोशल मीडिया बस पे आज हम लोग बात करेंगे अबाउट वन सच इवेंट विच एक्चुअली इज बजिंग एवरीवेयर।
1: व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, इंस्टा पे स्टोरी और रेडियो पे फुल फिल्मी अपडेट,
2: ये है द सोशल मीडिया बज।
0: वेल, एक ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, एंड दैट इज द मेट गाला 2026। ये जो है ना, इसका अगर यूई का एंगल ले लें तो यूई वाले लोग जो है वर्चुअली उस पर कनेक्टेड है। रिहाना की बात नहीं कर रहा, मैं रिहाना सिंगर की बात कर रहा हूँ जो साड़ी में आई थी, करण जौहर जो है मनीष मल्होत्रा के रुख में, दीपिका रणवीर जो है कपल फोट, एंड आलिया भट्ट का सेकंड अपीयरेंस। ठीक है, एनीवेज जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बट मेट गाला में अगर देखा जाए ना, इट इज़ वन सच इवेंट जहाँ पे रेड कार्पेट पे भाई ऐसे सब लोग तैयार होके आते हैं। लाइक वी रिमेंबर लास्ट ईयर किंग खान, दिलजीत दोसांझ, किंग, देयर वाज सो मेनी पीपल हु हैड दैट वेरी डिफरेंट पर्सोना। लाइक शाहरुख खान वाज लुकिंग किंग, दैट इज द ओनली वर्ड दैट कैन डिफाइन इट। बट अगर देखा जाए, देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन एक्चुअली बी ऑन द मेट गाला। अगले साल के मेट गाला में क्या क्या होने वाला है, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम थिंकिंग। आर वी गोना सी विकी कौशल, कटरीना कैफ विद बेबी विहान ओवर देयर? व्हेन इज तैमूर अली खान गोना मेक हिज मेट गाला डेब्यू? एंड वन सच डेब्यू व्हिच आई वुड वांट टू सी ऑन मेट गाला इज द बिग बी अमिताभ बच्चन। हाँ, उनका तो देखना पड़ेगा। उनका जब होगा ना मेट गाला का डेब्यू, तो भाई साहब जो मजा आने वाला है, जो हम लोग फूट फूट के एकदम मतलब मजे से देखने वाले, दैट इज समथिंग विच आई एम एक्साइटेड फॉर। इफ यू हैव वन पर्टिकुलर पर्सन दैट आप उनको देखना चाहेंगे एट द मेट गाला, कौन होंगे वो? 0508791054 पे बताइए, एंड लेट्स सी। आई होप सही है मेट गाला के रेड कार्पेट पे टाइगर श्रॉफ जो है फ्लाइंग जेट बन के ना आए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार, ये बंदा गाड़ी से भी सीधा क्यों नहीं उठता था, मुझे ये समझ नहीं आता है। हो जाते हैं भाई। लव स्टूडियो अगेन, एडवर्ड माया, सारा एस खान, तनिष बागची, जिसमें है टाइगर श्रॉफ। 10:33 ऑन द क्लॉक, मैं हूं शर्जील। गुड मॉर्निंग यूएई।

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। YBFM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

चाय की पहली सिप टू ऑफिस की लास्ट ओवर स्पीड। सुबह यूएई वाली मैडनेस, बेसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील।

0: झूठ बोले, झुमका गिरा रे। रेडियो बोले
1: झुमका।
0: YFM 105.4 UAE का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब एफएम 105.4 द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: chuck musty on board. Bus bajo! Fight Biffin Mano 5-4.
1: यात्री कृपया ध्यान दें, देसी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 105.4 पे आ रहा है।

केसरिया तेरा केसरिया से लेके चलिया तक जो दिल में बस जाए वही बचता है। YFM 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800-DUGASTA now. Dugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब FM 105.4।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग।
1: Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: हुक जो बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए
0: एनर्जी बोले
2: वाइब एफएम 105.4

0: और झुमका
1: देसी बीट्स यूएई स्ट्रीट्स तैयब के साथ ओनली ऑन देसी एक्सप्रेस। देसी बीट्स फुल हीट ओनली ऑन वाइब एफएम 105.9।

0: ये है यूएई का देसी साउंड ट्रैक वाइब एफएम 105.4।
1: देसी एक्सप्रेस विद तैयब, देसी बीट्स, यूएई स्ट्रीट, 11 AM to 3 PM,
0: ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजो वाइब पे एफएम 105.4 वाइब एफएम
1: अटेंशन प्लीज नेक्स्ट स्टॉप
2: डेज एक्सप्रेस विद टैया.

शरारत का स्टेशन, मस्ती का डेस्टिनेशन, देसी एक्सप्रेस विद तैयब, सिर्फ वाइब FM 105.4 पे।

0: बोले
1: झुमका किनारे
0: रेडियो बोले
2: झुमका
0: वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब एफएम 105.4 द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Gusta Properties is redefining the future with Vision 10/10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Gusta office today or call 800 Gusta now. Gusta Properties Vision 10/10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड. वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4.

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब FM 105.4।

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station. Ishq ka soundtrack aaj bajega. Sirf Vibe FM 105.4.

0: रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजो फाइट बे पे मनो 54
1: Attention please! Next stop! Day 6 Express with Teddy Up.

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

बोले रेडियो बोले वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब FM 105.4, the UAE's number one desi music station.
1: This music station.

0: से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजो
1: वाइट बे पे 105.4
2: Attention, please. Next stop,
3: Day 6 Express with Teddy Up.

शरारत का स्टेशन, मस्ती का डेस्टिनेशन, देसी एक्सप्रेस विद तैयब, सिर्फ वाइब FM 105.4 पे।

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE।

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus a 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800 Jugasta now. Jugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

सरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ

चमक। यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: हुक जो बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए
0: एनर्जी बोले
2: वाइब FM 105.4

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग।
1: Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.
0: Brought to you by Dugasta Properties.

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। YFM 105.4।

देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। YBFM 105.4, the UAE's number one देसी म्यूजिक स्टेशन।

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल. Sounds good with Sophie on YBFM 105.4.

0: This is Vibe FM 105.4.
1: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
2: Sounds good
1: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
3: 105.4.

All right, everyone, a very good afternoon to all of you. And yes, I was talking about Satinder Sartaaj because abhi thodi der pehle Abdul Rahman was actually enjoying the track that I just plugged in. You know, I had the opportunity to announce him on stage, and I'll tell you one thing, he has such a cult following, and the people who love him because of his intensity and his passion and the way that he performs. Like, he's quite a big name in the Punjabi music industry for sure. Anyhow, so moving on, aaj hamare paas ek topic ki discussion hai jo hai bade mazey ka, and koi na koi trending topics ke upar hum baat karte rehte hain. Acha, aaj ka trending topic is going to be on fashion and style, and I'll tell you why. Because Met Gala ki pictures or videos har jagah aayi hain, then Devil Wears Prada just recently got released as well, and then so many photo shoots of different celebrities around the world. So I was thinking that, you know, hey, let's talk about fashion and style today. Acha, mujhe aisa lagta hai ki jo fashion hai वो बदलता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई नया, आपको पता है ना कि फैड चलता रहता है, कि अगर आज एक चीज़ फैशन में है तो कल नहीं है. मगर स्टाइल दिस से इज़ इटर्नल, यानी कि हर एक का एक अपना एक स्टाइल होता है, वो आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसको शोकेस करता है, और मुझे लगता है कि हमेशा उसको आपको जैसे कहते हैं ना वो इंटैक्ट भी रखना चाहिए. यू शुड ऑलवेज हैव दैट ओरिजिनल फील एंड हैव योर इंडिविजुअलिटी फॉर श्योर एज फार एज स्टाइल इज कंसर्न. यानी कि फैशन में कुछ भी चल रहा हो, मगर आपने अपने स्टाइल में वो चीज़ करनी है. सो द क्वेश्चन इज, आवर टॉपिक डिस्कशन रादर, सिंस एवरीवन इज काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट फैशन दीज डेज, द क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू थिंक ऑफ फैशन एंड स्टाइल, हुज नेम इंस्टेंटली पॉप्स अप इन योर हेड. यानी कि वो ऐसे कौन से सेलिब्रिटी है, चाहे वो साउथ एशिया से हो, इंडिया पाकिस्तान से, या वो बाहर वेस्ट में कोई हो, आपका इंस्टेंटली सबसे पहले नाम उनका आता है. सो थिंक अबाउट दिस, ओके, हुज नेम इंस्टेंटली पॉप्स अप इन योर माइंड व्हेन समवन मेंशंस स्टाइल और फैशन. सो ये आपने मुझे बताना है, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टाइलिस्ट सेलिब्रिटीज टुडे. 0508791054 इज द व्हाट्सएप नंबर, अपने नाम के साथ और शहर के नाम के साथ. अभी के लिए पंप अप द वॉल्यूम, एंजॉय द म्यूजिक एंड ड्राइव सेफली.

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

वर्क डे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: लगे।
1: ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम, सोफी के साथ हर गाना एक गोल। साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक. Sounds good with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.
0: Brought to you by Dugasta Properties.

0: ट्रैफिक जाम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब एफएम 105.4
1: देसी सॉन्ग ऑफ द आवर ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4

0: ये है यूएई का देसी साउंड ट्रैक वाइब एफएम 105.4।
1: Drive home, switch on, and let Sophie turn up the good vibes.
2: Sounds good.
1: Sounds good with Sophie on YBFM 105.4.

वर्क डे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

अलावा बड़े मजे मजे के वोट्स आए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव सम न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड अक्रॉस द यूएई एज वेल जो कि हम लोग उससे रिलेटेड हैं. फिर हमारे पास ट्रैफिक अपडेट्स हैं. आई हैव गॉट द गोल्ड रेट्स एज वेल, द करेंसी एक्सचेंज रेट्स एंड अ कपल ऑफ अदर न्यूज आइटम्स एज वेल. अभी के लिए होते चुका है बकल टैप एंड ड्राइविंग सेफली एज वी स्पीक. सो हाउ इज द डे शिपिंग अप सो फार एंड व्हाट इज द प्लान फॉर द वीक अहेड? इज इट गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट? इज इट गोइंग टू बी इजी पीजी? आई यू स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट? आर यू गोइंग टू बी बैलेंसिंग इट? लेट मी नो. और आगे ईद उल अज़हा भी आ रही है, सो वी गॉट अ लॉट ऑफ हॉलीडेज. सम पीपल आर going back to the home countries, some people are not, you know. So I'll tell you something, this is perhaps I guess for the first time in my life that I'm not going back to my home country, because I was I used to travel almost every Eid because I wanted to be with my mother, but this time around I spent at least a good 1 month with my mother already, and as I think it's a good idea that I should call her over here, but post Eid for sure. So let me know, what are your Eid plans? Are you traveling, staying here? 050-879-1054 is the WhatsApp number. Drive safely.

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

0: और शर्मा।
1: इवनिंग का स्ट्रेस सोफी के साथ हो जाओ रिफ्रेश।
2: साउंड्स गुड
1: विद सोफी ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

बर्थडे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: drive home, switch on, and let Sophie turn up the good vibes.
1: Sounds good.
0: Sounds good with Sophie on Vibe FM 105.4.
2: इश्क का साउंडट्रैक आज बजेगा सिर्फ वाइब एफएम 105.4।

night, everyone. A very good evening to all of you. Thank you so very much once again for texting in and for the feedback as well. Anyhow, so we've got a message, and this one has been sent in by Alia. Hi, Alia. How are you doing? Thank you for your message. And she wants me to dedicate a song to her. Okay, so how about the next song? So I remember when Juna came out by Hasan Rahim. It was one of my favorite tracks because I do like Hasan Rahim and I did like Juna. And then a couple of other tracks as well. You know, bahut sare unke aise gaane hain jo ki itne zyada popular nahi hain jitna Juna tha. Then of course Blockbuster also came out. And then there was a song called Peanut Butter. So I'm going to be dedicating this song to you, Alia. Thank you for texting in. And aise kaise bade maze ka gaane hain. Aur bhi bahut sare unke acche gaane hain. But mujhe aisa lagta hai ki हसन रहीम जब टीम अप करते हैं अब्दुल्ला कसुम्बी के साथ सो उनकी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन होती है. एनी हाउ मूविंग ऑन, सो इट इज़ ऑफ कोर्स ट्यूसडे द 5th of May 2026 एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फैशन एंड स्टाइल. ओके, बिकॉज एवरीवन्स टॉकिंग अबाउट द मेट गाला. एंड बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ द मेट गाला, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो चीज़ ट्रेंड कर रही है वो है जी 2026 मेट गाला का डिप्ड नेल ट्रेंड. यानी कि आपके नेल्स ऐसे लगते हैं कि जिस तरह आपने डिप किया हुआ है किसी चीज़ के अंदर. अनदर, देयर आर डिफरेंट कलर्स टू इट एज वेल. ऑफ कोर्स यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स एज वेल. आई फॉर वन डू नॉट लाइक इट. आई डोंट नो व्हाट दिस ट्रेंड इज. आई मीन देयर आर सो मेनी एडजेक्टिव्स आई कुड यूज, बट आई वुड रादर नॉट. इट रिजर्व माई कॉमेंट्स. नॉनदलेस, दैट इज अ ट्रेंड दैट अपीयर्स टू बी एवरीवेयर एट द मेट गाला एज वेल. आई वॉन्ट यू गाइस टू सर्च फॉर इट. ठीक है, हम जरा चेकआउट करें डिप्ड नेल ट्रेंड एट द मेट गाला. तो आपके पास वो सारी जो जिसे कहते हैं ना पिक्चर्स और वीडियोज़ आ जाएंगी जिसके अंदर ऑल द सेलिब्रिटीज़ हैव दैट नेल ट्रेंड एज वेल विच इज़ हैपनिंग एट द मेट गाला. नॉनदलेस, तो ये चीज़ ट्रेंड कर रही है. सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक डिस्कशन, आज हमारा सवाल ये है दैट व्हेन आई टॉक अबाउट फैशन एंड स्टाइल whose name instantly comes to your mind. So which celebrity would you like to mention when you think of fashion and style? So for example, a lot of people are talking about Kareena Kapoor and Karisma Kapoor and Sonam Kapoor and Brad Pitt, Fawad Khan, Diljit Dosanjh, Urmila Matondkar, and different naam le rahe the, Meryl Streep ke naam le rahe the. So let me know.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.

0: All right, everyone, a very good evening to all of you. Time ho chuka hai about 5:33. Shall be with you all the way till 7 PM. And today, of course, it is Tuesday and it is the 5th of May 2026. Aaj hamare paas, as usual, ek topic ki discussion hai. And because you know the Met Gala is trending and Devil Wears Prada recently just got released, and so many people had their, you know, celebrity photo shoots as well. So I was thinking, hey, you know what, let's talk about fashion and style today. To mujhe ye bataiye ki jab koi fashion and style ke bare mein baat karta hai, to sabse pehle naam किस सेलिब्रिटी का आपके जहन में आता है? यू नो, इंस्टेंटली यू लाइक, हे, यू नो व्हाट, दिस पर्सन इज वेरी स्टाइलिश. सो अगर मैसेज फ्रॉम अब्दुल रहमान इज ट्यून इन एंड इज ऑन हिज वे होम एंड इज लाइक, सोफी, मैं जाके बताऊंगा कि खाने के लिए क्या खाना, बिकॉज आई लव हिज डिनर प्लान्स, मैन. द वे दैट ही सेंड्स हिज वीडियोज, इट्स सो स्क्रम्पशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मेरे मुंह में पानी आ रहा होता है, इतने मजे मजे की चीजें ये खाते हैं. एनी हाउ, ही सेज दैट थ्री नेम्स, ओके, he's talking about three names. He says, सबसे पहले तो अगर आप स्टाइल की बात करें, फैशन की बात करें, तो मुझे लगता है कि रणवीर सिंह काफ़ी स्टाइलिश हैं, अक्षय कुमार भी काफ़ी फैशन को जो ना फॉलो करते हैं, एंड हनी सिंह इज़ वेल एट द सेम टाइम. एंड देन ही सेज, आई एम ए बिग फैन ऑफ सलमान खान. ये तो आपने बहुत सारे नाम ले लिए, बट आई थिंक कि जितने लोगों का आपने नाम लिया है, वो स्वैग तो है, डेफिनेटली, फॉर श्योर. एनी हाउ, सो आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अतीक, हु इज़ ऑल्सो टेक्सटिंग इन. एंड अतीक से, सोफी, दरिए वो सो बिजी, सुबह 8:15 से लेके 4:30 किस तरह हुए पता ही नहीं चला. आई नो, यू नो, समटाइम्स अतीक, देर आर सर्टन डेज दैट यू डोंट नो बिकॉज यू आर सो बिजी, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग इज वेल. इफ यू आर बिजी, दैट्स गुड. सो बिग शाउट टू यू, ड्राइव सेफली. आई थिंक इज कमिंग बैक टू दुबई फ्रॉम अबू धाबी. And then he wanted me to plug in a track by Sajjad Ali Sahab. Oh, अच्छा, ये जो आपने गाने का मुझे वर्जन बताया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्जन है कोक स्टूडियो का, नाराज. मुझे वैसे ही सज्जाद अली साहब इज़ द ओ जी फॉर शोर, तो एनी थिंग ही टचेज टर्न्स टू गोल्ड, सो विल डेफिनेटली प्लग इट इन फॉर यू. उसके अलावा सलीम इज़ टेक्सटिंग इन एंड वो कह रहे, मैं अजमान जा रहा हूँ सोफी, तो मेरे लिए कोई धमाकेदार गाना चला दें. बस जी, आपके लिए धमाकेदार गाना हम अभी पेश करते हैं, ठीक है? 0508791054 इज़ द व्हाट्सएप नंबर. इससे ज़्यादा धमाकेदार गाना नहीं हो सकता. सलीम, आपके लिए, टेक अ लिसन एंड एंजॉय इट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.
2: ना दे दिल पर देसी मुंह तन्ने तदा रोना.

वर्कडे का द एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

All right, everyone, a very good evening to all of you. It's exactly 5:44 on the dial, and she'll be with you for the next, I guess, one more hour, all the way till 7 p.m. Anyhow, so it is Tuesday, of course. It is the 5th of May, 2026, and I have received a couple of messages. Aaj, as usual, our topic of discussion chal raha hai. Acha, aaj kyunki hum baat kar rahe hain about fashion and style, so the question is that, if I were to ask you that which celebrity, according to you, is the epitome of style and fashion, yani ki ek aisa naam jo instantly aapke zehen mein aata hai jab aap baat karte hain fashion ya style ke upar. So a lot of people are talking about, you know, Karisma Kapoor and Kareena Kapoor. Then Brad Pitt, उसके अलावा फवाद खान, फिर आई है बात सलमान खान, अक्षय कुमार, उसके अलावा दिलजीत दोसांझ, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, एलिजाबेथ टेलर, ऑड्री हेपबर्न, मतलब इतने ज़्यादा नाम आ रहे हैं. शाहरुख खान का नाम आ रहा है. डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है अपने सिंगर्स और म्यूजिशियंस और एक्टर्स के नाम दे रहे हैं, इवन पॉलिटिशियंस फॉर दैट मैटर. सो द क्वेश्चन इज, यू नो, विच इज़ द वन सेलिब्रिटी हुज नेम इंस्टेंटली कम्स टू योर माइंड व्हेन आई टॉक अबाउट फैशन एंड स्टाइल. सो मुझे मैसेज आया है गोविंद का, एंड इज़ वन ऑफ माई रेगुलर लिसनर जो कि शारजा की तरफ जा रहे होते हैं यूजली. ही सेज दैट सोफी, यू नो वॉट, If you ask me, I think it has to be Shah Rukh Khan for sure. Because जिस तरह लड़कों के लिए कुर्ते होते हैं तो उसमें जब वो कुर्ते पहनते हैं तो वो बड़े फेमस हो जाते हैं. Do you remember that shirt in कुछ कुछ होता है and the chain called cool? Yes, I remember. I remember the friendship bands also. Anyhow, so he votes for King Khan, and then he's like, Sophie, King movie में भी आपको पता है उनकी earring जो है वो भी बड़ी hit चल गई. Yes, of course, you know, I do feel that celebrities do have that kind of platform. That anything that they carry has a lot of effect for sure. Then he says Deepika Padukone is also quite stylish for me. She's a style icon, and whatever she wears kind of becomes trendy as well. All right, and then इंटरेस्टिंगली गोविंद कह रहे हैं कि अगर आप शाहरुख खान की बात करें सोफी, तो हर किस्म के कपड़े जो है ना वो उनको सूट करते हैं. इज़ नॉट इवन दैट टॉल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही लुक्स ग्रेट. क्लियरली आई कैन स्पॉट अ शाहरुख खान फैन. ओके, आई नो दैट यू आर अ डाई हार्ड फैन गोविंद, सो बिग शाउट आउट टू यू एंड थैंक यू फॉर टेक्सटिंग इन. एनी हाउ, सो वी हैव गॉट अनदर वोट, एंड दिस वन हैज बीन सेंट इन बाय, Let me say, check the name. Okay. Hi, how are you? Robert, it's been a while you haven't texted in. How are you doing, Robert? And he's texting in after a while. And he says, Sophie, for me, it has to be John Abraham. Actually, yes, John Abraham is quite stylish. You know, some people just have that kind of swag. Even if they wear any kind of clothes, it's just the way that they carry themselves because it's so comfortable in their skin, or they have their own kind of style. You know what I mean? So 050-879-1054 is the WhatsApp number. Sir, Faraz ka message aaya hai, wo keh rahe Sophie, गर्मी से बुरा हाल हुआ है. आई नो, आप इमेजिन करें कि अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई, तो पहले तो स्टार्ट भी नहीं हुई, फिर वो स्टार्ट होगी, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे इसके बारे में. अभी के लिए आई जस्ट लाइक टू मेंशन वन थिंग, सरफराज, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस, यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. लेट्स डेडिकेट अ नाइस सॉन्ग टू यू ऑल्सो. बाय द वे, एक नई फिल्म आ रही है, पति पत्नी और वो दो. I'm not too crazy about it, to be very honest, but I do like this version because I was a huge fan of the original track called Kali Teri Choti Hai, because I used to love that song back in the day as a Punjabi. But for now, take a listen and enjoy the music.

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक. Sounds good with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: Alright everyone, a very good evening to all of you. Thank you so very much once again for texting in, for the feedback as well. And time ho chuka hai 6 baj ke 9 minute. She'll be with you for the next half an hour. And uske baad Arshad bhai would be taking over. Speaking of Arshad bhai, by the way, Mudassar ka mujhe message aaya hai. And today, you know, we were talking about style and fashion. And the question was, our topic of discussion rather, ke jab aap baat karte hai fashion ya style ki, तो इंस्टेंटली कौन से सेलिब्रिटी का नाम आपके जहन में आता है दैट यू फील इज अ पिटमी ऑफ फैशन एंड स्टाइल दैट यू नो दिस पर्सन कैन कैरी एनीथिंग. सो मदरसा से सूफी, यू नो, यू रियली काइंड ऑफ ही रियली एंजॉयड द सॉन्ग्स दैट आई प्लेड. बट द सॉन्ग बिगिंस विद अ वेस्टर्न फ्लेवर्ड रीमिक्स ऑफ दिल बोले बूम बूम फॉलोड बाय हमारा देसी तड़का. व्हाट अ रीमिक्स. थैंक यू फॉर प्लेइंग इट एंड आई होप यू वेल व्हेन इट कम्स टू फैशन. सोफी जी एंड अर्शद भाई कम नहीं है हमारे. अरे क्या बात है, अर्शद भाई को मैं बोलूंगी तो फूले नहीं समाएंगे. अभी उनको मैं बोलती हूँ उसके ऊपर एक अदद शेर तो बनता है. एनी हाउ, सो थैंक यू फॉर दैट. ही सेज बाय द वे, विच वर्जन ऑफ दिल बोले बूम बूम डिड यू प्ले एंड काली तेरी चोटी है. ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. सो बूम बूम का वर्जन था मीशा शफी की आवाज़ में. सो व्हेन यू सर्च फॉर मीशा शफीज बूम बूम, यू विल डेफिनेटली गेट होल्ड ऑफ दिस वर्जन दैट आई प्लेड. आई थॉट इट वाज कूल, सो हेंस आई प्लेड इट फॉर यू. अच्छा, दूसरी बात, ये जो रीमिक्स था, ये इसका नाम है रूपती रानी. इट्स एन अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म. इट्स कॉल्ड पति पत्नी और वो दो. आई एम नॉट टू क्रेजी अबाउट वॉचिंग द फिल्म, बट आई डू लाइक द सॉन्ग बिकॉज ऑफ द नॉस्टैल्जिया, यू नो व्हाट आई मीन. सो इट्स अ फन सॉन्ग टू डांस ऑन एज वेल. एनी हाउ, सो मरिया वाज ट्यून इन and she's from Sharjah and we were having a chat on Aamir Khan. Acha Maria, since you know she said that, you know, Aamir Khan ke andar ek versatility hai ki he can literally wear anything and kind of get away with it. I remember watching his interview. I don't know agar aapko Maria yaad hai ki nahi, but I think it was with Karan Johar. Anyhow, so you know Kareena was sitting with Aamir and Kareena categorically said ki Aamir ko to bilkul hi fashion sense nahi hai. Aur wo ye kehte ki waqai mere mein koi fashion sense nahi hai kyunki mujhe bas apna aapko comfortable rakhna hai. So he's like, I just feel like wearing something which is extremely comfortable for me and I'm okay, right? Acha, now that you mentioned Aamir Khan, so I was like, you know what, Aamir Khan ke actually kuch aise characters the jo bade cult the. ठीक है, डू यू रिमेंबर रंगीला, हिज कैरेक्टर एज मुन्ना इन रंगीला. आई मीन हिज परफॉर्मेंस वॉज फैंटास्टिक. एंड देन ऑफकोर्स यू नो कयामत से कयामत तक विच स्टार्टेड इट ऑल, राजा हिंदुस्तानी अगर आपको याद है. मैं तो खैर एंशियंट हूँ तो मुझे ऑफकोर्स याद है. दिल आई रिमेंबर, हम है राही प्यार के, इफ़ यू रिमेंबर दैट. उसके अलावा ऑफकोर्स उनकी जो बाद में फिल्म्स आई थी वो भी काफ़ी हिट थी, यू नो, रंग दे बसंती, फना, तारे ज़मीन पर ऑफकोर्स वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थ्री इडियट्स, ठीक है, और ऐसी कुछ उनकी फिल्म्स थी जो काफ़ी ज़्यादा हिट थी, गजनी. सो मुझे ऐसा लगता था कि वो जो शुरू के आमिर खान थे, मुझे लगता था वो सुपरस्टार नहीं थे, वो एक्टर थे. यू नो, वेन एवर यू वॉच्ड हिम परफॉर्म ऑन स्क्रीन, इट वॉज नॉट आमिर खान द सुपरस्टार, इट वॉज आमिर खान द एक्टर. एंड आई थिंक दैट्स वॉट काइंड ऑफ set him apart. Now I don't feel the same way about him and we are going to talk about this later on as well. But nonetheless, Maria, because aapne itne pyar se pehli dafa message kiya hai, so aapke liye, pump up the volume. Enjoy this beauty of a track that would bring back a lot of memories.

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल. साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4.

0: ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.

0: All right, everyone, a very good evening to all of you. Thank you so very much once again for texting in, for the feedback as well. It was such a fun show. I had such a great time with all of you. So time ho chuka hai 6:40, which means it's time for me to sign out. And right after my show, we've got Arshad Bhai taking over from his hit show, of course. And it's a famous 7 to 11, so make sure that you tune in to his show as well. And with that, we're there on the social media platforms as YBFM 105.4. Please go ahead and connect with us because we would love to know your feedback on our shows and the content and the playlist and the RJs. And I'm there as Sophia Anjum, which is S-O-P-H-I-Y-A for Sophia and A-N-J-A-M for Anjum. So with that, aaj hamara topic of discussion was on fashion and style. And you know, today we were talking about the Met Gala, we were talking about Devil Wears Prada, which by the way, I'm going to be watching tonight, although bahut hi bure reviews aaye hain uske overall, but I still want to go ahead and watch it for old time's sake, as I say, because of the memories and the nostalgia. So my friends and I have that plan. Michael, I did watch. Again, मैंने आपको माइकल का रिव्यू भी दिया था, बट आई थिंक आई एम गोना डू लाइक अ जॉइंट रिव्यू टुगेदर एंड आई माइट बी पोस्टिंग इट ईदर टुनाइट और टुमारो फॉर श्योर, मे बी टुमारो फॉर श्योर. नॉनदलेस, आज हमारा सवाल ये था दैट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट फैशन और स्टाइल, राइट, सो हुज़ नेम इंस्टेंटली पॉप्स अप इन योर माइंड, वो कौन सा सेलिब्रिटी है जिनका नाम इंस्टेंटली आता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया रेखा जी का नाम, देन करिश्मा कपूर, करीना कपूर, यू नो द यूजुअल सस्पेक्ट्स, इवन दिलजीत दोसांझ फॉर दैट मैटर, ब्रैड पिट फॉर दैट मैटर, फवाद खान ऑल्सो, शाहरुख खान आ गए थे, सलमान खान, अक्षय कुमार. Then we had a bit of Rishi Kapoor and Siddharth from Rande Basanti. You know, so many different names. Aamir Khan, kisi ne bol diya tha ki bhai, Maria ne in fact bola tha, unhone bola tha ki wo to har kuch bhi pehen lete hain to wo acche lagte hain. So I think, again, wo meri baat hai ki bada relative sa ye term hai, because what is green to you might be blue to me. You know what I mean? So somebody asks me this question, to be very honest. मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जब आप कुछ चीज़ों के बारे में मेंशन करते हैं तो नाम सिनोनिमस होता है. जिस तरह बादशाह इज़ सिनोनिमस विद शाहरुख खान, शहनशाह इज़ सिनोनिमस विद अमिताभ बच्चन, ड्रीम गर्ल इज़ सिनोनिमस विद हेमा जी. सो मेरे लिए स्टाइल और फैशन की जब आप बात करें, हमेशा से जीनत अमान साहिबा जो है वो मुझे ऐसा लगता था दैट शी वॉज द एपिटमी ऑफ स्टाइल एंड ग्रेस. Overall, I think it's Audrey Hepburn because of the way that she carried herself. So for me, that is definitely there. So I hope that you guys enjoy the show. Have a fabulous evening. Catch you guys on the show tomorrow. And since we were talking about Zeenat Aman, so hum डॉन 2 से गाना चलाते हैं, ठीक है, उनकी याद में. अच्छा, बाय द वे, वेदर फोरकास्ट में इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हॉट, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, नंबर वन. नंबर टू, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड नंबर थ्री, आई नो दिस इज वो वाली बात, बट अभी भी लोग ये समझ रहे हैं कि मौसम जो है वो कुछ भी नहीं है, हम बस बाहर निकल जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल है, एसी का टेम्परेचर ये वो. इट इज़ हॉट नाउ, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ऑफ द एसी, ट्राई टू नॉट गो आउट ड्यूरिंग द पीक टाइम विच इज़ फ्रॉम 12 नून टिल 3 PM, राइट डायरेक्टली इन टू द सन. ओके, एंजॉय द इवनिंग, कैच यू गाइस ऑन द शो टुमारो, बाय बाय.
1: मुंह ही जल गया है.

से भागम भाग के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

0: समय का सही हिसाब वाइब के साथ टाइम चेक ऑन वाइब एफएम 105.4।
1: और दोस्तों इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:01 हो रहे हैं और अब यहां से हम उड़ान भरेंगे मुस्कुराहटों की तरफ। तो दोस्तों हम हैं तो क्या गम है ना।
0: टाइम चेक हो गया, अब म्यूजिक का टाइम शुरू। स्टे ट्यून्ड टू वाइब एफएम 105.4।
2: अरे सुनो दोस्तों, दुबई का नया फैशन नया शोर।

0: शाम की गुफ्तगु, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। सईद अरशद
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
2: यही तो गम है।
1: दोस्तों टंकी से गर्म पानी आ जाए इसके लिए जनवरी में मैंने दुआ मांगी थी, अब मई में जाकर पूरी हुई है। इसीलिए बोलते हैं कि खुदा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं।
3: Arshad has entered the building. Keep within reasonable distance from your radio set.
4: Vibe 105.4, number 1 desi music station. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद having a license to chill है मेरा नाम। Believe me, I am a liar. है ना?

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus a 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800 Jugasta now. Jugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: Evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
3: यही तो गम है।
2: दोस्तों, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। हमारे यहां अगर किसी पर गिरता तो बोलते दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और सूत जाते, है ना।
4: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग अ लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, शो के दूसरे लिंक में जैसा आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से मैं कम से कम एक काम की बात करने लगा हूं, और ये काम की बात इत्तफाकन होती है, और वो इसलिए होती है ताकि जो मैं खुराफाती बातें आपके साथ करता हूं आपको हंसाने गुदगुदाने मुस्कुराने की, उन पर कोई नजर न लगे। और एक बात अगर अच्छी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, है ना। आज दोस्तों, जब मैं यहाँ आ रहा था ड्राइव करते वक्त ही आमतौर पर मैं सोचता हूँ, और ये भी एक बहुत अच्छा जोक है कि मैं भी सोच सकता हूँ, है ना। तो आज मैं सोच रहा था दोस्तों कि एक मुझे संस्कृत का दोहा याद आ रहा था, उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्ञ दृढ़ सुहृदश्चे लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। यानी जो लोग उत्साह से भरपूर होते हैं, जिनके अंदर जोश जज्बा उमंगे भरी होती हैं, दूर की सोचते हैं और काम को सही तरीके से करने वाले होते हैं, कामयाबी उनके खुद कदम चूमती है। यानी जो लोग मेहनत सही तरीके से सही दिशा में एक अच्छा एम बनाकर करते हैं, कामयाबी हर हाल में उनके पास आती है। और एक जगह और मैंने पढ़ा था कि जैसा परिणाम चाहते हैं, जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं, वैसा ही आपको परिश्रम करना चाहिए, वैसी ही आपको मेहनत करनी चाहिए। और फिर वही मेरी फेवरेट पंक्तियां कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मुस्कुराहटों के सफर की तरफ उड़ान भरते हैं, यादों को पहले याद करते हैं, क्योंकि जब हम यादों को याद करते हैं तो इस तरह से यादों में खो जाते हैं कि दिल से मुस्कुराते हैं। और जिन लम्हों को हम जीकर आ चुके होते हैं, एक बार फिर से उन्हीं लम्हों को ख्यालों में ही सही जीवंत जी पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, आप यहां से शुरू कर सकते हैं अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम। एंड यस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी आई एम अ लायर, है ना।
1: शाम का स्टार्ट थोड़ा अजीबोगरीब खबरों के साथ, ये है शारजा से शुरू।

कार में हीरिए, दिल में वाइब्स, ड्राइव का परफेक्ट साथी, वाइब FM 105.4।

0: स्टोरीज, गॉसिप और थोड़ी मस्ती। अरशद के साथ शाम बनेगी कुछ खास।
1: फेमस, फेमस 7 to 10
2: विद सईद अरशद।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development or call 0460205355 today.
1: Stories जो आपकी रात को यादगार बनाए. This is the famous 7 to 10 with Syed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
1: यही तो गम है.
2: और अर्शुमन खन्ना जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, लिखते हैं कि अरशद भाई, मैं आपको अपना एक दोस्त का सच्चा किस्सा सुनाता हूं. मेरा दोस्त एक जगह गया, अभी हम दिल्ली में थे तो एक जगह तरबूज लेने गए हम ओखला मंडी में. वहां पर मेरा दोस्त हर तरबूज पर अपनी कैप रख कर देख रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो. तो मेरा दोस्त जिसका नाम अजय पटेल है, कहने लगा कि यार मेरी पत्नी ने कहा है कि अपने सिर के बराबर तरबूज लेकर आना. सोचिए जरा कि जहन तक हाईजैक कर चुकी होती हैं ये मासूम पत्नियां, है ना.
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन.
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम.
4: वार्निंग, पीवी ऑन ड्यूटी, हस्बैंड संभल जाओ, ये है पीवी अलर्ट.
2: और अर्शुमन साहब, जैसा आपने कहा कि आपके दोस्त जो हैं अजय पटेल वो बॉडी बिल्डर भी हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्या फायदा जिम में हड्डियां तोड़ मेहनत करने की कि बड़ी जबरदस्त बॉडी बना लें और 5.5 फिट की पत्नी के सामने मुंह नहीं खोल पाए, है कि नहीं. बल्कि एक साहब तो मुझे यहां तक कह रहे थे कि आप पत्नी से एक बार पंगा ले लें, किसी उसके खानदान या उसके घर वाले की बुराई कर दें और उसके बाद अपने पूरे खानदान की बुराइयों का पिटारा उससे खुलवा लें और तमाम जो राज आपको भी नहीं पता अपने और अपने खानदान के बारे में वो उससे उगलवा लें. हाय बेचारे, है ना. चलिए दोस्तों, मेरा काम तो आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है और आपके इस सफर को यादगार बनाना है, ताकि आप जो थकन हो गई है दिन भर की काम करने के बाद वो थकन मिट जाए, आप मुस्कुराएं और एकदम फ्रेश तरोताजा होकर अपने घरों की तरफ जाएं. तो बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाएं, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम. और दोस्तों, आप यूं ही जारी रखें अपनी शैतानी, अपने खुराफात लेकर अरशद का नाम. व्हाट्सएप नंबर है 0508791054. और दोस्तों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी आई एम अ लायर, है ना.

0: हुक जो बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए
0: एनर्जी बोले वाइब एफएम 105.4

0: म्यूजिक के साथ थोड़ी मस्ती और थोड़ी बातें। द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद।
1: देसी बीट्स फुल हीट ओनली ऑन वाइब एफएम।

0: ये है यूएई का देसी साउंड ट्रैक YBFM 105.4। Evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
2: यही तो गम है।
1: और दोस्तों, देहरादून के रहने वाले ब्रिज थपलियाल ने लिखकर भेजा है कि अरशद भाई, आज आपने पत्नियों का जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज आपने मेरे दिल के तार हिला दिए। मैं तो यही सोच रहा था अरशद भाई कि वो पतिदेव कितने भाग्यशाली होते होंगे जिनकी बीवी दो दिन की छुट्टी में भी मायके चली जाती है। जिंदाबाद, मुझे मजा आया।
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
1: Vibe FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।
0: वार्निंग, पीवी ऑन ड्यूटी, हस्बैंड संभल जाओ, ये है पीवी अलर्ट।
1: और ब्रिज साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हालात वो हैं कि एक साहब मुझे बता रहे थे कि हम तो इतने बदकिस्मत हैं कि हमारी पत्नी गर्मी की छुट्टियों में भी मायके नहीं जाती। सोचिए उनके कितने बुरे हाल होते होंगे। लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए ब्रिज साहब, तो मैंने ये देखा है कि शादीशुदा लोग फोन पर किसी से भी 5 मिनट से ज्यादा अगर बात कर लेते हैं तो वो घर में बैठी CBI के जांच के घेरे में फौरन आ जाते हैं, है ना, उनका नंबर सर्विलांस पे लग जाता है कि नहीं। इसलिए दोस्तों, जब शादी हो गई है तो देर इज नो यू टर्न, तो आप बस पत्नी के गुण गाएं और बस उसके इशारों पर अपनी दिनचर्या को चलाएं। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप मुस्कुराएं और बैक टू बैक 3 गीतों को अपने होंठों पर सजाएं, क्योंकि आप सुन रहे हैं YBFM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, आप यूं ही जारी रखें अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम। एंड यस, If you have any problem, please come to me. I will increase that and believe me, I am a liar. है ना?

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। YBFM 105.4, नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: स्टोरीज जो आपकी रात को यादगार बनाए. दिस इज द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद.
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
0: यही तो गम है.
1: और अब्दुल खालिद साहब ने लिखकर भेजा है, जो कि कराची पाकिस्तान के रहने वाले हैं. लिखते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो तो कहीं पर भी बैठकर शिव बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि हर डायलॉग राजकुमार का ही हो. बिल्कुल सही, आपने कम से कम कॉन्सेप्ट तो बदला.
2: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन.
1: वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम.
0: पुरानी यादें, नई बीट्स, सैयद अरशद के साथ मैशअप माशूका.
1: और एक और साहब हैं जिनका नाम है संजय वर्मा, जो कि रुड़की उत्तराखंड के रहने वाले हैं. लिखते हैं कि अरशद साहब, आज ट्यूसडे है और ये मैसेज अगर आप 10 लोगों को भेज देंगे तो कल वेडनेसडे आ जाएगा, और अगर आपने नहीं भेजा तो आप देख लीजिएगा परसों को थर्सडे आ जाएगा. पता नहीं मुझे आप धमकी दे रहे हैं या प्यार से समझा रहे हैं. और आसिफ अली साहब ने एक और मैसेज लिखा है. लिखते हैं कि अरशद भाई, आपने जो ये मैसेज लिखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं चाहता हूं कि आप मेरे नाम से इसको पढ़ दें. आपने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उसके बाद आपने जो कहा था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था. आपने कहा था इसलिए शादी कीजिए ताकि अगर नर्क में जाना पड़े तो आपको अजाब महसूस ही नहीं होगा. ये मैं अक्सर कहता हूँ कि शादी इसलिए करनी चाहिए कि अगर इंसान शादी के बाद जन्नत में जाएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर जहन्नुम में जाएगा तो घर जैसा ही माहौल पाएगा, है ना. चलिए दोस्तों, फिलहाल आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक 3 गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम. और दोस्तों, आप यूं ही जारी रखें अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम. व्हाट्सएप

बोले झुमका किरारे रेडियो बोले झुमका 105.4 UAE का नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब FM 105.4, the UAE's number one देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10/10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800-JUGASTA now. Jugasta Properties Vision 10/10, a smart move for higher returns.
1: स्टोरीज जो आपकी रात को यादगार बनाए. दिस इज द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
1: यही तो गम है.
2: दोस्तों एक जगह मैं पढ़ रहा था कि सपना और लक्ष्य में क्या अंतर है, तो एक साहब ने उसका जवाब दिया कि सपना लड़की का नाम है और लक्ष्य लड़के का नाम है. फिर मैंने उनको बताया भाई नाम में कुछ नहीं रखा. मुझे मालूम है कि एक लड़की का नाम वर्षा था, जिसे उर्दू में बारिश कहते हैं. वर्षा नाम था उसका और जिंदगी में कई लोगों की आग लगा कर चली गई थी वो. है ना,
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन.
2: Vibe FM 105.4, नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम.
1: पुरानी यादें नई बीट्स सैयद अरशद के साथ मैशअप माशूका. मैशअप माशूका.
2: और एक साहब है जिनका नाम है खालिद अली साहब, जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं. लिखते हैं कि एक गांव में दो औरतें आपस में बातें कर रही थी. पहली बोली कि हे बहन, ये हस्बैंड क्या होता है? तो दूसरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहन, ये अजीब तरह का बैंड होता है जो सिर्फ घर के बेलन से ही बजाया जाता है, और इस बैंड को बजाने का मजा सिर्फ शादीशुदा औरतें ही ले सकती हैं. और इस बैंड की अच्छाई ये है कि इसे जितना बजाओगी उतनी ही सुरीली आवाज, सुरीली धुन निकलेगी, और धुन सिर्फ घर के अंदर ही रहेगी. और मजे की बात तो यह है कि इसे कितना भी बजाओ ये हंसता ही रहता है, इसीलिए उसे हंस बैंड कहते हैं. क्या डिस्क्राइब किया आपने, जिंदाबाद. चलिए दोस्तों, फिलहाल तो आप बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4, नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम. और दोस्तों यहां से अब हम मुस्कुराहटों के सफर को विराम देंगे और अब हम मोहब्बतों के सफर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जहां हम मोहब्बत की गुनगुनी आंच को दहकाते हैं, हुस्न को और हसीन बनाकर अपने दिल की धड़कनों को गुदगुदाते हैं. तो बैक टू बैक तीन गाने, गानों के उस पार मोहब्बतों के फसाने.
3: यही है प्यार वाली मोहब्बत.

0: शाम की गुफ्तगू, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। सईद अरशद,
1: वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सईद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, अब शो का तीसरा घंटा शुरू हो चुका है, जिसमें हम बातें मोहब्बतों की करते हैं, जिसमें हम हुस्न को और हसीन बनाते हैं, और जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे महसूस कर कर उसको ये और एहसास कराते हैं कि हम बस उसी को चाहते हैं, उसके लिए जीते हैं, उसी पे मरना चाहते हैं, उसकी बातें करने में जो मज़ा आता है उसको महसूस करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सांसें मेरी, जिंदगी भी मेरी और मोहब्बत भी मेरी, मगर हर चीज़ मुकम्मल करने के लिए ज़रूरत है तेरी। बैक टू बैक तीन गाने, गानों के उस पार मोहब्बतों के फसाने। तो सुनते रहिए वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सईद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।

0: स्टोरीज, गॉसिप और थोड़ी मस्ती। अरशद के साथ शाम बनेगी कुछ खास।
1: फेमस, फेमस 7 to 10
2: विद सईद अरशद।

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river right inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development or call 0460205355 today.
1: Evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
2: Vibe FM 105.4, number one desi music station. Show ka naam hai the famous 7 to 10 with Saeed Arshad. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. Saeed Arshad having license to chill है मेरा नाम. शो का तीसरा घंटा दोस्तों, अब हम बातें मोहब्बतों की करेंगे. जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे महसूस करके कुछ यूं कहेंगे कि चलो राहतों का हिसाब करते हैं, चलो चाहतों की किताब पढ़ते हैं, दिल के दरवाजों को खोलकर चलो उससे खिताब करते हैं. चांद और सितारे उस शबाब में रहते हैं, हसीन ख्वाब सारे उसके जवाब में रहते हैं. हुस्न की तमाम खूबियों को समाकर वो इतराते हैं, मस्त भंवरे उन्हीं के चारों तरफ मंडराते हैं. उसकी एक आहट में फूल खिल जाते हैं, उसके मुस्कुराते ही तारे जमी पर उतर आते हैं. आओ उसको दिल की बस्ती में बसाते हैं, खूबसूरती की मूरत से जीवन को सजाते हैं, उससे रौनक को रंगीन बनाते हैं, रसीले शब्द बनाकर उसे होंठों पर सजाते हैं. आओ प्यार के गीत गुनगुनाते हैं, मोहब्बत का अलख जगाते हैं.

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10/10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800-JUGASTA now. Jugasta Properties Vision 10/10, a smart move for higher returns.
1: शाम की गुफ्तगू, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। सईद अरशद
2: वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सईद अरशद हैविंग अ लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। शो के तीसरे घंटे में बातें हम मोहब्बतों की कर रहे हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे महसूस करके कुछ यूं कह रहे हैं कि वक्त की रफ्तार, पहला पहला प्यार, दिल करे बार बार इकरार लगातार, वो मेरा तेरे करीब आना, तेरा मुझको तरसाना, मेरी प्यास को और भड़काना, वो तेरा मुस्कुराना मुझको दीवाना बनाना, नजरों से नजर उतारना, दिल को तावीज की तरह बांधना, वो रिश्तों के लिए रिश्ता बनाना, वो जीवन के लिए जिंदगी बन जाना, वो मुझ पे तेरा नजरे टिकाना, तू मेरा है बस मेरा है ये मुझे एहसास कराना, और मैं बस तेरा हूँ, तेरा हूँ, बस तेरा हूँ, उसको इस बात का यकीन दिलाना सबसे अच्छा लगता है, सबसे सच्चा लगता है। प्यार से भी प्यारा है हम दोनों का प्यार, सच में न्यारा है ना।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development .com or call 0460205355 today.
1: Stories jo aapki raat ko yaadgar banaye. This is the famous 7 to 10 with Sayed Arshad.
2: Vibe FM 105.4, number 1 desi music station. Show ka naam hai The Famous 7 to 10 with Sayed Arshad. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. Sayed Arshad having a license to chill है मेरा नाम. शो के तीसरे घंटे के पहले लिंक में दोस्तों मैंने जो पंक्तियां पढ़ी थी वो कुछ यूं थी कि सांसें मेरी, जिंदगी भी मेरी और मोहब्बत भी मेरी, मगर हर चीज मुकम्मल करने के लिए जरूरत है तेरी. इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है. इस उम्मीद के साथ कि कल इसी शो में शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टिकटॉक पेज को फॉलो कर लें. कोई राय और मशवरा देना चाहें तो आप हमारे इंस्टा से जुड़ सकते हैं. दोनों की आईडी सेम है, vibefm vibefm 1054, या फिर आप मेरे पर्सनल इंस्टा से जुड़ सकते हैं या मेरे टिकटॉक पेज को फॉलो कर सकते हैं. वहां पर आईडी है sayed.arshad sayed.arshad007, और तमाम सोशल मीडिया पर दोस्तों मेरी यही आईडी है. तो आज के द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद में फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. खुदा हाफिज. शब्बा खैर.

बोले झुमका की रे रेडियो बोले झुमका 105.4 UAE का नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब FM 105.4, the UAE's number one desi music station.

हमारे घर से गुजरता था, दूरियां बढ़ती गई पर दिल फिर भी धड़कता था। आखिर एक अनजान मोड़ पर हम बिछड़ कर रह गए। जमाने से ज्यादा मोहब्बत करी थी इसलिए शायद ये जख्म से

0: 104.
1: You're listening to YBFM 105.4.
2: वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं।

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छूटी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

शक्लों मासूम अकल दिया कच्चियां नू तुसी देओ जी सलाहा छोटे छोटे बच्चियां नू के टुटी हुई गड़ वाली गानी नहीं बनना बंदा जिद्दां दा भी बनी पर जानी नहीं।

मेरे हानिया मेरे दोस्ता मेनू जानदे वेख लई सारी उम्र ना खड़िया नाल मेरे मेरा सिवा ता सेक लई